दुख दारू सुख रोग पया जा सुख काम न होई। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा। जात मह जो जोत मह जाता कल कला पर पूर रहा। तू सच्चा सब सिर्फ

सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

जीनत नह पेव आप आपुनी बुध है जेती बरनत पेन पेन तो है तेती तुमरा लखा न जाए।

कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो राण खाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तू

हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभा

साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा गुरु बाण कीता गुरु विटहाओ जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै

तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संत

तिन वसतु पइयो सात संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंच।

सत्संग जी मेरा मन कर रहा है पूरी अष्टपदी का कीर्तन हो जाए तो वो अच्छा लगेगा क्योंकि सारिया तुकां तुहाडे सामने लिखिया ने पाठ तो बड़ी बारी करते हैं थोड़ी विचार हो जाएगी पंजाबी विच इंग्लिश विच अर्थ लिखे आए ने हिंदी विच भी ने सो कुछ पल्ले पै जाएगा और रल के पढ़ दें।

के एक तो एक बारी पढ़नी ठीक नहीं लगती क्यों थोड़ा फोकस शायद से ना हो, सो असी दो दो बारी पढ़ लेने पर जरूरी है। मैं देखा कई बार ना सहज पाठ भी हो रहा हों, स्क्रीन ते लिखा भी हों, पर कई बार लोग स्क्रीन तो ना मुंह दूजे पासे करके बह जाते, जिवें हुंदा ना कि माता पिता कोई चीज़ बोल रहे ने, कोई वड्डा भरा वड्डी भैन कोई सियाणा कुछ बोल रहा, तो असी दो गल ही ना सुनी है, कान दूजे पासे कर ली है, टीवी लगा के मैं उधर फोकस कर लिया। सो उस तरह नहीं चाहिए, ये तुहाडे लई स्क्रीन लगी है, बहुत खर्चा होया ना दे उपर, गुरुद्वारा कितना आलीशान बनिया है, दो बिल्डिंगा होर बन रही ने, यह साडे सारिआं संगत वास्ते हो रहा सारा कुछ। सो कोशिश करिया करिए स्क्रीन ते लिखिया जितना कुछ असीं पढ़ के समझ सकते हैं समझन दा जतन करिए, अंदर बैठ जाए, भरोसा बन जाए और रल के पढ़दे हां।

सहज है प्रसाद तू प्रगट संसार। सतगुरु जी मेहरा बख्शा करन इलाही बाणी दा कीर्तन करदियां होईयां भुल्लां गलतियां सतगुरु बख्श लैण बाणी दा भाव साडे हिरदे अंदर वसाउण। हुण गुरु के प्यारे अखंड कीर्तन जथे दे सिंह सिंघणियां इलाही बाणी दे कीर्तन नाल सिमरन नाल सानू जोड़नगे जी। प्यार नाल सारे फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

पूरब लिखत लिखे गुरपाया मरण हरलिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जाने आ तने अंतर हमें कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पाव है।

है सुख मांगे, मुको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अष्टपति सिमरौ सिमर सिमर सुख पाबो काल कलेश तन माहि मिटाबो सिमरो दास बिसंपरे क नाम जपत गणत निक वेद पुराण सिमरत सोदा खेर किन राम नाम का खेर किन गए कृष जीव सावै ता के महिमा गनि न आव कांखी एक दर्श तुहारो नानक गुण सगमहि उतारो सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम।

हर हर देवा हर हर जन के मालिक जीना हर धन जन गुआ प्रभ दीना हर हर जन के ओट सदानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन सुमद नम रसमाते ना आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुगत बह करे नानक जन संकीर्ति तारे पार जा ते हर को नाम गाम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुंदर दुख लथा नाम के महिमा संत रिद बसै संत प्रताप दुर सब नसै संत का संग बट भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कशबर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोई सलोक बहु शास्त्र बसिमृति पेके सर्व टंडोल पुरुष नाही हर हरे नानक नाम अमूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र स्मृत बख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरे अनेक प्रकार की बुझत न पुन दान हो मैं बहुरत्न शरीर कटाए हो मैं गुर रति वर्त नेम कर भांति नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदासत पिसर थी वे अग्न माहि हुमद प्राण कनक असुर है पुमदा न्योली कर्म ग्रह वसन जैन मार्ग संबंध साधन नेमुख नेमुख कर शरीर

सत्संग गोचर लहे, साधु के संग अजर सहे, साधु के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साधु के संग दृढ़ सब धर्म, साधु के संग केवल पार ब्रह्म, साधु के संग पाई नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान, साधु के संग सब कुल उधार, साधु संग साधन बीते कुटुंब निस्तार, साधु के संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म राय करी सेवा, साध के संग सुभ सुरदेवा, साधु के संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं किश काल, दर्शन पीठ धोत निहाल, साध के संग कलु कत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग विश्व धर मेला, जो ऐशा सोई फल पावे, साध गए संग न बिरथ जावे, पार गुण साध रिद बसे, नानक उतर सर सुन दसे, साध गए संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध गए संग न मन दे विसरे, साध संग सर्व निसरे, साध के संग लगे प्रमिठा, साधु के संग अड़गड़ रीठा, साध संग प्यागे गारी, साध संगत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक सद पिटे संजोग, साध की महिमा भेद न जाने है, जेता सुने तितब के अने, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की सुभा का ना ही अंत, साध की सुभा सदा बेअंत, साध की सुभा उर्ति ऊंची, साध की सुभा मूर्ति ऊंची,

मंगल सद जाग सर्व थोक सुनिय करताक राज मह राज जोग में जोगी तप में तवी सरग्रस्त में भोगी ते आय दे भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का कि अंतर न पाया जाग की दी न की मितना है सकल देव हा देव गाहे पिता का जन्म के जाने पूत सकल उपस्पुरोई अपने

पवन नाम कृष्ण गोत्रे सुन श्रवन कर कृपा दिशापन नाम लाए नानक चौथे पद में सुजन गत पाए। रूप सत जाका सत स्थान पुरुख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाकी वाणी सत पुरुख सब माहि सुबाणी सत कर्म जागिर चना सत मूल सत सत तुपत सत करणी निर्मल निर्मल जिस बुझाए तिश सपनी सत नाम।

अपने जन का पर दाटा के अपने सेवक ईश्वर पर रखे अपने दास को देव बढ़ाए अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवक की आपद रखे ताकि गति मित कोई न लाख।

अपने ही कश परम सहस सियान पलिया न जाइए नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइए सफल दर्शन बेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण।

नानक दागा मस्तक लेख एक रापे को शालाहे किसम दे को मनाहे किसके गुण गाओ नंत मन तन जापे को भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रभु व्यापन कुछ सारे कते पे एक राज प्रदर्शित के मन

जय जगजन जय जय प्रभु जान। जा जग जन जच प्रवधान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मी सदा पूर सदा सदा प्रभ के मन गाव सा सद प्रभ तुम्हें त्याव चरण कमल सुनो गया प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत कोट को अधर नानक मांगन प्रभ सर प्रभ की दृष्ट महासुख होय हार दस पाव बिरला कोय जैन जाखिया से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख ने डोला ने सू पर परे प्रेम रस रंग उपजय चाव सदग संग परे सन्नाम सब त्याग अंतर प्रकाश अनदन विलाग बड़ भाग्य जपे प्रभ सोय नानक नम्रते सुख होय सेवक की मनसा पूरी पहई सतगुरु ते निर्मल मत लई जानो को प्रभ दयाल सेवक की सुदन।

सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे सास सास सिमर गोविंद मान अंतर की उतरे चिंद आस अनहित त्यागो तरंग

हद वजे सुन सुन अनंत गिरि प्रभु गजे प्रगटे गोपाल महान के मथे नानक उद्रितन के साथे सरन जो सुन सरने आए कर कृपा प्रभाव मिलाए मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम साध संगलेन सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल बिगाते रहते राम नाम सुन रसन कहते कर प्रसाद प्रभु धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु की उस्तत करहो संत मीत साविधान गागर जी सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मानव सह सोहत निधान सर्व चता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ओज पाई स्थान बहुन होवे अवन जान हर तन खर्च ले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पतत गमन प्रगा सब कै मद सगल त्यों उदास सुंदर चतुर तत्का देता समदृष्टि समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जप मन कोई सब जुग मह तां की गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत सासुर भेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सत्संग मिटै

सोचै सोच न हो वही जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस स्याणपा लख हो हे ता एक न चलै नाल

एक है। भुजंग प्रयात छंद नमो सर्व माने समस्त निदाने नमो देव देवी अपेकी भेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथ इंद्र संगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती विभूते एकलंक बिना एकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम बिरदे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखीय परमीय भोगी भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत दिवे सुत।

मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो अर्ध अर्धंग अगंग उघर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदीय पेदीय नाम अकामं समस्तोपराजी समस्तस्ताम।

मुन गण प्रणाम नृपैन काम आत जोत प्रचांड मित गात खांड आलिस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाट्य अन दंड बाढ़ है।

के सर्वंग कड़ी है, के सर्वंग दली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दान्य है, के सर्वत्र गौण है, के सर्वत्र पौन है, के सर्वत्र देश है।

अनाद स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामेन्द्र त्रिभर्गं त्रिबाध्य अगंजे अगाधे सुपंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, केन्द्र प्रणास है, पृथ्वी प्रवास है।

चरपट शांत वै प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत वै प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वं

नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादन विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी।

शांतन नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे नरकामंग विभूते समस्त स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते।

मारे पच्छा श्री अस्तो जजू करे हो रच्छा राख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता।

पीर पछान घट घट के पट पटकी जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या करख करत हाँ कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ।

वर्णत पिन पिन तुहते ते तुमरा लखा न जाय पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहि भूपा अंडज जीरज सेतज कीनी उत

हरता दुष्ट दोखिन कोशा करता श्री अस्तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बाशत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई।

कहानी। ए मन चंचला चतराई कने ना पाया, चतराई ना पाया कने तो सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया। माया ता

आवहे। जिसनो कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावे तिवे चलावहे। एह सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया। एह तनकै मन वसिया जिन तरह लिखिया आया। एक फिर है कनेरे।

ना ही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले से वणजारी कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुरनाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे होवे ता सनमुख।

सदा रहो हो हर रंग जपे हो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो हो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर हर हर नित करह रसना कहया कछु न जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी। कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, शिव शक्ति आप पाए कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एकस।

न जानी गुरु बाजो हो तत्तै सार न जानी तेहि गुणी संसार भ्रम सुता सुतिया रहण विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनो आनंदन हरल विलागै जागत रहण विहानी।

मुसलमाना सिर्फ सरयत पढ़ पढ़कर है विचार बंदे से जे पवह विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप पार तीर्थ ना वैरचा पूजा गरवास बहकार जोगी सुनते आवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार।

0: अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख खंदे पत गवाई विण नावे किस थाए न पाई रह बिबाणी मरी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी
1: सो सुपाय हर का नाम अनुसाए नानक अंदर कर सो पाए आ संदेश ते ने केवल हो मैं शब्द जुलाए
0: पौड़ी पर तेरे मन पाऊंगे।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मोख द्वार, जति सदा वै जुक्त न जाने छड़ बह करबार, सबको पूरा पे हो वै।

0: सत्संग जी आप सत्र बेनती है तो आप जानते हो कि लड़ीवार सहज पाठ चल रहे हैं। सो बेअंत प्रोग्राम वालों कर रहे लड़ीवार सहज पाठ चल रहे हैं। सारे बेनती है कि भाई रजिंद्र सिंह तुम्हें फोन करके अपना उन्होंने फोन दे दिता कि समय समय से जरूरत के मुताबिक अपना टेलीफोन करके सारा प्रचार साझा कर लिया करेंगे। उनका फोन नंबर है 408-712-4145। सो सत्संग जी आप सत्र बेनती है कि जरूर जिस पास ध्यान देना। बाकी सत्संग जी अज संगरान का दिन है, सब संगतों को संगरान की मुबारक हो, चढ़िया महीना सब संगत सुखा नशीत हो। सत्संग जी आप संगत पता है जो नाथ अस्पताल जी डबल बिल्डिंगा बन रही ने, बेअंत खर्चा हो रहा। सत्संग जी बेअंत परिवारों वालों अपनी कमाई सफल करते हैं, बेअंत माया भी भेटा की तो सब भागी हैं जिन्हें माया नहीं भेट की, जरूर हिस्सा पा के आप जरूर गुरु की खुशियां प्राप्त करो। बाकी सत्संग जी भाई साहब सहज पाठ आरंभ करेंगे 10 बजे तक, 10 तो लैके 10 मिनट तक। स्पैशल कीर्तन है भाई ओंकार सिंह होरां दा, वो आप सरण कराउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी वडभागी हो जो गुरु चरणा विच जुड़ बैठे हो, घरां विच बैठ के हाजरियां भर रहे हो। आओ समा होया है अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ दा। अज पावन अंग 931 तो श्री सहज पाठ अगे प्रारंभ होणगे। दखनी ओंकार की बाणी चल रही है, राम कली रागंद उस पावन बाणी दे 10 पदे हो चुके ने। 10वें पदे तो अगे अज आपां बाणी प्रारंभ करनी है। 931 अंग तो अज दे श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी। प्यार सहित हाजरियां भरिए।

प्रभ पकड़ी, जिन खिंचै तिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बहुड़ न पछोताइए, पबै पल है।

फिर कर बैसो। महाराज कह रहे ने निज कर अपने हिरदे रूपी घर विच बैठ जाओ, मन नू टिका लो। अर्जन प्यारे परमात्मा दा नाम लईए, सदा ओदा शुकर करिए, फिर सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महानस महारस पीने। फिर निरपो हुए पजो भगवान, साध संगत मिलकी नोदा। शरण परे प्रबंध जामी, नानक होट है सचे पातशाह। गुरु गरीब निवाज, तेरी शरण विच आया, तेरे तो बगैर किसी दा आसरा नहीं। तेरी ओ ओट बन जाए कि मेरी जीवन जिंदगी सफल बन जाए। तेरे आसरे विच ही सारे आसरे बन जाते हैं। जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का, बाबे नानक का, दसां पातशाहियां का ओट आसरा लिया, गुरु रामदास जी का, गुरु अर्जन देव जी का, फिर दुनिया भी उन्होंने पूजन लग पैंदी। जिन नानक सतगुरु पूजिया, तिन हर पूज करावा। अपने गुरु का रज रज के सन्मान, रज के सत्कार करिए। यह भी एक सत्कार है कि महाराज की बाणी नू प्रेम नाल सुनना। दुनिया के सारे झंझट ख्याल छड़ के महाराज के वचना नू अपनाउना, इलाही नूर समझ के, और फिर उन्होंने जीवन विच ढाल लेना। असल सत्कार यही है, क्योंकि गुरु नू मनन वाले बड़े ने, पर गुरु दी मनन वाले घट ने। मत्था टेकन वाले बहुत ने, पर महाराज साडी झोली विच की वचन पा रहे ने, उन्होंने एक्सैप्ट करन वाले बड़े घट ने। जीवन खुशहाल बन जाए संग्राम दे दिहाड़े दी, पादो ही परम भुलाने आ। दूजा लगा हेत सचे पातशाह, ये महीना ताड़ी साड़ी सब दी जिंदगी विच सुख लेके आए। प्यार मोहब्बत तालमेल सब दे कारज रास जी, ताड़े साड़े सब दे जीवन विच खुशियां दी लहरां बहरां। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी।

मिल पीवो भाई। कई बार मन विच आउंदा है कि बाणी नाल आंतरिक यात्रा करिए, कि आ जो बाहरी साडा भेख है इस नाल जुड़िए। बड़ा वड्डा कंट्रास्ट सानू नजर आउंदा दोवां दे विच, पर जदों बाणी साडी साडी कपट खोल दी है, कपाट खोल दी है, कपट नहीं कपाट, उस वेले पता लगता है कि सारा एक कंटिन्यूटी दे विच है। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे ने, गुरु अर्जन पातशाह फिर फरमाउणगे, गुरु रामदास पातशाह ते सवेरे ही लग जांदे ने आसा दी वार, हर अमृत पीने आसा दी वार विच असीं सारे गायन करदे आ। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह तक आके हुंदी है। सो उस रंग तक पहुंचदिया नित्रे ते केवल पांच ही सी ना, हजारां दे इकट्ठ दे विच्चों सारे नहीं सी आए, उस दे रंग विच रंगे होए। उस मंजिल तक पहुंचण दे लई सानू गुरु पातशाह फरमा रहे ने कौन, जिन्हां दे असीं पुरब मना रहे हां, जिहड़े गुरु नानक दे संग लग के उहनां दे अंग लग के अंगद हो गए। लहणे तों अंगद तक दा सफर असीं सारिआं ने तय करना है, और किवें करना है, बाणी दीआं पैड़ां बाणी दे स्टैप्स दे उत्ते चल के। नानक अमृत मने मागे, बाहरी रिचुअल करदिआं करदिआं कई वारी असीं मन दी खेड़ नूं भुल जांदे हां, पर गुरु पातशाह फरमा

प्यारी साध संगत जी निशान साहब की सेवा हुई है पांच प्यारियां दा गुरुद्वार विच स्वागत है। आओ जुगो जुगो अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की पावन गोद दे विच सब तो पहला जिन्नी भी संगत गुरुद्वार विच हाजर है और जिन्नी संगत ऑनलाइन वेख रही है सारे गज वज के फतेह की सांझ करो, मन बिरतियां एकागर करो। कुछ पलों लई तुहाडे नाल गुरु दे संगीत की गल करनी है। सारे मन बिरतियां एकागर करके फतेह का जवाब फतेह विच दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब साडे शब्द गुरु ने और 21वीं सदी विच असी प्रवेश कर चुके हैं। गुरु पातशाह ने साडे लई एक ऐसा सिस्टम एक ऐसा प्रबंध सिरजिया जिहड़ा साडे सिख धर्म नूं भी लीड कर रहा है और सानू भी समाजिक धार्मिक राजनीतिक और रूहानी तौर उत्ते गुरु ग्रंथ साहब की सानू सारियां नूं अगवाई प्राप्त है। अज तुसी वेख रहे हो गुरुद्वारा सैन होजे इस स्थान दे उत्ते जिन्ने भी एफर्ट किए जाते ने उन्हां विच गुरमर्यादा नूं केंद्री रख के जो गुरु ग्रंथ साहब की फिलासफी दर्शन है उस दे अकॉर्डिंगली सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते ने। उन्हां विचों एक प्रोग्राम जो बहुत महत्वपूर्ण है और सारे विश्व दे विच एक गुरु घर एक गुरमत संगीत दे वड्डे केंद्र वजों उभर के सामने आ रहा है वह है गुरमत संगीत। तुसी सारे शब्द कीर्तन सुनते हो पर शब्द कीर्तन की विद्या है कि और गुरमत संगीत की है